छेउतेनालाई भुला कि तेनालाई फुली जानी नामा सजनी झन्के थैली मै कान्छालाई बासा।